देख जरा ये टोप पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का सोप रे बेटा, ये लक्ष का सोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का सोप रे बेटा, ये लक्ष का सोप। गोरा धुनाई की थाली, सूरत तेरी काली काली, तेरे लिए मैं

बम्बई फूलना झांसी। और बताओ क्या क्या लाए? शहर की काली खांसी और ये अंग्रेजी फांसी। कौवा चले हल्क की दाल, पहुंची गले भी कैसे दाल। कौवा चले हल्क की दाल, पहुंची गले भी कैसे दाल। देखो जी देखो।

देख जरा ये टोप, पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप। गोरा धुनाई की थाली, सूरत तेरी काली काली, तेरे लिए मैं देख

0: तेरे लिए मैं देखिए लाया होठों की लाली, अब शादी में होगी न देर, अब शादी में होगी न देर।
1: वारे मेरे शेरवा, मेरे शेरवा, मेरे शेरवा,

0: कहाँ कहाँ से घूम के आए?
1: बम्बई पूना झांसी।
0: और बताओ क्या क्या लाए? शहर की काली खांसी और ये अंग्रेजी फांसी।